बस में घूमना चाहूंगा मेरे के लिए बाना जी मले में जाने को बदलें ने देखो नीबा भी चंद कुछ लेने दे नो कर दस बेची पर नहीं सी कोई खेम खाने आता बाती है ये कि न्यू बंदे मत हुए वो ऐसा वेक बोल फने ले कैसे मान सी कुछ को सी उपला उन अबे ले बांटो के जोन से उसी कुछ असी जो लेने का हाथ गोए तबे ने कुछ कुछ उन सीनो कंटिन्यू गोइंग को माने वो हम ग्वाले सी फ्रंट वेने अच्छा कुछ लेने के लिए या कुछ अच्छा ना अच्छी फ्रंट ओनियन का पूला मापी को इंगानी जो ग्रहण लोज या वो पूला मापी